0: जिस परमात्मा ने रचना रची है उस मनुख दी चंगी माड़ी हालत नूं वी ए आप ही जानदा।
1: हुकम तेरा खरा पहरा गुरमुख कसै बुझाए।
0: प्रभु तेरा हुक्म बड़ा अटल है, बड़ा खरा है, बड़ा भारा वजन वाला है, ते गुरु दे राही तू आप किसे विरले नूं बजाउणा।
1: क्यों कहे नानक चा जंत विचारे जा तुद भरम भुलाए।
0: इवे तीसरे नानक जी कह रहे ने कि ए जंत विचारे की कर सकदे ने जदों आप ही तुसी इन्हां नूं भुलाया भाव औजड़े पाया होया।
1: सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वड्याई।
0: हुण अखीरले भाव दसवें बंद विच गुरु अमरदास जी कृपा कर रहे ने हे मेरे थिर रहण वाले मालक तेरियां वड्याईयां वी तेरे

गोरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ। हर जन के बड़ भाग बडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रपता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पाग हीन जम पास। जो सतगुर शरण

मन कहो करिया ऊडे ऊड आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा अंत न पार अमरिया।

बियले माने एक न चेत समूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहो ना हो जति सती नहीं पड़िया।

केवल नाम सृंजा मिलाग भव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कह राऊ जप तप संजय।

पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभर आए, मरण काल का त्राव उसने भर आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरियास तुझ जू करे हो रचा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

रेठ घर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख

चंद्रीत गबाणी तारिका मंडल जनक मोती धूप माल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत तेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननाई तोही सहस पद विमल नान एक पद गंध बैनो सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जो ज्योत है सोए तिसदा चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंदन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कोई जाते तेरे नाई वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिख तो लिखे गुर पाया मन हर ले गुरु मंडल मंडा ही कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही कर डंडाओ तो पुन वड्डा ही रहाओ साकत हर रसाद न जाने आंतन अंतर हम कंडा ही ज्यो ज्यो चले चुभ दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडाही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला तीहा खाट चलो हरला आगे बसन सुहेला औध कटे दिन सरहारे मन गुरमिल काल सवारे रहाओ ए संसार विकार संसे मैं करो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वह रस कठ कथा तिन जानी जा को आई सोई रिहा जो हर गुर ते मने वसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर न होए गो फेरा अंतर जा

0: उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3875.

गुण रवे जत देखो तत सोए कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजह गोविंद कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया नीत हमारा सोए कबीर आई मुझह तह अनक करे कर पेस हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए।

वे भी चंदन हुए रहे, बसे जो चंदन पास, कबीर बास बदाई बूढ़िया, यूं मत डूबो कोई, चंदन कै निकते।

पंडित राजे पूपती आवे कौने काम, कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर मदाए, कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिसमाहे, हों बलिहारी तिन को पैस जो नीकस जाए, कबीर इह तन जाएगा सकु

तन जाएगा तब न मार्ग लाए। कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ मरती ना जाने।

सासु ही कबीर तू तेरो नाओ कबीर। राम रतन तब पाइए जो पहले तजह शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए।

राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। कबीर उजल पहर कापरे पान सपारी खाए। ये

सांझा करे कबीर सिंह हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुण लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़दे स्यो पल जोग भगत ना छाडो राम की पावै निंदो लोग कबीर लोग के निंदै बप्पड़ा

फैसलो की कुकर फली साकत की बुरी माय। ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाय। कबीर हर नाम

बिन हर भगत ना मुक्त होए, यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया, जय पा गंगा नीर। पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। कबीर हरदी पियारी, चूना उजल पाए। राम स्नेही तो मिलै, दोनों बरन गवाए। कबीर हरदी।

माताहर पूछे कौन है परा हमारे बार, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया भयो कबीर कबीर, कबीर सुपने हूँ बरड़ाए के

उबरियो गुल की लहर च भक जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर परियो हो फरक कबीर पापी भगत ना पावई।

आरोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना ओह चरह बोहोर कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दोहरा लीन कबीर दास को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोई कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जो ना के तह अपनो अदमाज लीजेंगे लूट।

कबीर मैया कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं यो तन देवे फूक, अंधा लोग ना जाने रहो कबीरा कूक, कबीर सती पकारे चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान, कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए, कबीर जा को खोजते

जिन हर का नाम ना चेते हो, बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई, जो हर नाम अदास कबीर।

कारण बपुरा क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख में पर है रेत। रास बरानी राखते खा

पाप किए राखे तलै दुराए परगत भए निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया पाई रहया ना बंद कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए सरपन होए कै औतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ईरा खै नार गद ही होए कै औतरे पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी

पुरी पवित्र हुए गोग्राम कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते पिखिया भली

जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोए, पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधो जे जे वरी ते मत बंधो कबीर, जय है आता नून ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो

रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल।

अरे तिस बिन दूसर को नहीं ये कैसे जनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुंचे है खसम को जो बीच ना खाही काम। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले मन हठ तीर्थ जाए, देखा देखी स्वांग धर भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर की।

दिसै चंचल बहुगुना मत ही नाना पाक कबीर मेरी बुद्ध को जामना करै तिसकार जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गत पर्यो कतंब

बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का सज मन का अपमान। ऐसा कोई दास हुए ताहे मिले भगवान।

गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता हुए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कल कामनी शिखर तजा फहराए। ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला

मान मुनि मुनवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही भोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागई ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजै

सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम कबीर जेह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस काल।

स्थान कबीर फली मधु करी नाना विद को नाग दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज कबीर दावे दाजन होत है निर्दावे रह न संक जो जन निर्दावे रह सो गने इंदर सो रंक कबीर पाल समोहा सरवर भरा पीना सके कोई नीर भाग बड़े सह पायो तू पर पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसह क्यों एहो खिसह शरीर ए

त्याग पंडत पंडत जानमुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद देहे बिहाए वामन अखर सोद कह हर चरनी चित लाए कबीर संत न छाड संत जो कोटक मिल है असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी तिर जनहा।

पास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं।

लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आप है आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया एक समाना एक कबीर जा कर साधना सेवी है हर की सेवा नाही ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पाव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संगत इहो मानी होए गई पाठ चार कबीर निर्मल बूंद।

पीर साई मुझ में है क्या खता मुखो न बोले पीर। कबीर जी जो मार है जोर कर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है।

कबीर धरती अर आकाश मह दुए तू बरी आवद हत दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध

जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू कबीर बिकार है चितवते झूठे करते आस मनोरथ कोई ना पूरे हो चाले उठ नरास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतो तकत है ना डो

परापूर्वली पावनी प्रगट होई आए। कबीर का लह तो लह दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए। करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छिड़ाए। महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाए। धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाए। महला पंजवां कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए। संजुक संगी बैसते तब

कबीर कोठे मंडप हित कर काहे मरहु सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चित मोह ना करै क्या मेरे चितवे होए।

अपे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेओ फिर आ लाल चमाहे पाप करम ता

नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके

सरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद।

नेम किए ते सबैर सातल जाहे नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ घरी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो

पियो बुझो नहीं घट मह जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पाच मू

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहिंदा है, चलता रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, होने एहा जात है, होने कर्म कमाए, होने एही बंदना फिर जौनी पाए। होने दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशय, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं विकसित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण का मूल है। वख वख जीवों विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं, जैसे असी देखते हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होने रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दुष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे उस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार पे खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे
दीवाना दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है, जोबन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन बिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब विच है, धन घर विच है या धन सोचां विच है, विचारां विच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी तो पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस भी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशत। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहोल से बेहतर है जहोल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान की मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम की जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल का सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है।
भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर प्रमाण कर रहे हैं। हम बड़े कवि कुनीन हम पंडित

बाटे। ए बुद कब है ननासी, कह रविदास सब है नहीं समझते, भूल परे जैसे बोरे। क्योंकि सारे भूल के पागल हुए फिर देने, कौन हम बड कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ये बुद्ध कब है नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते खड़ा होंगे और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंगे, क्योंकि अवगुणों के आसरे से अहंकार को अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसने इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जान। इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल के तल ते जी नहीं रहा। संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने। अहंकार भी पंड चुकी फिर देने, पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंगे, और अहंकारी दिया अखा, अहंकारी का मस्तक, अहंकारी की चाल स्पष्ट रूप में अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दी निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अष्ट चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान, और खलड़ी का मान, इस तो अलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने,
கருப்பூர் பகுப்பு வந்தா பர்சுமானுக்கு தேகம் மலீனம் மஜாருதர் துருகந்தா நானுக்கு அத் கர்வேன் அக்ஞானடோ கபூர்த்தே சந்தன் ஜேசியா புல்லா ஜேசியா பவித்திர வஸ்துவா மனுக்கி தன்னால் சூந்தையா ஸ்பர்ஷ் கர்வையா மெல்லியா ஹோ ஜாந்தியா நே மஜாருதர்

0: पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

काफी बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं

निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुहारी तो।

सत जुगत माण्यो चलयो बल बावन भायो त्रेत तय माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार सकियो उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो काल जोग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अभ

जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पाए सुख पाए संतन के प्रसादे महा आनंद पाया सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्ष्यो।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

घर बिन संतना जी मई हर बिन संतना जी मई बिन हर न मैं मरूंगा मैं सतगुर से पी फिर हरी मैं सतगुर से पी फिर हरी क्यों गुरबिन जी

अमृत से सुतासिया आका हर अमृत पान करो साध संग मान पिता से जीतन पर रंग हर अमृत पान

हर नाम प्राप्त होए, हर नाम प्राप्त होए, हर नाम प्राप्त होए, हर नाम प्राप्त होए, हर नाम प्राप्त होए, हर नाम प्राप्त होए।

0: निर्मल नाम से मन आए, निर्मल नाम से मन आए, नाम से मन आए, निर्मल नाम से मन आए, निर्मल नाम से मन आए,
1: Why do?

सतगुरु फरमाया सारी यह करे हो यो पहल खंडे तार यो पहल खंडे तार यो पहल होए जन सुहेला होए जन सुहेला होए जन सुहेला होए जन सुहेला जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला

मन लागे हर पीछे मन लागे पीछे मन लागे हर मन की सेवा लागे हर की सेवा लागे हर की सेवा लागे I don't like.

मेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा दर्शन प्यासी दिन सुरात चित भगवान जन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही आए सबना दा बेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी तनासरी महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसहरा। हाँ नाम हर का सदा जाचौ देहि प्रभ तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानण नित साच तीर्थ मजना। साच न लागे मैल क्या मल धोई है।

आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावै आनंद अनदिन हरख साचा दुख कलविख पर हरि सच नाम पाया गुर देखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बीणी ता संगम सत सते आराधे कंकार साचा नित दी चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कहे सब को एके वड़िया खीए हाउ मूर्ख नीच अजान समझा साखीए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा कूच करहे आवहे बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी भरपुर रहया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजै सच सोई आखण तोट न भगत भंडारी भरपुर रहया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजै सच सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जाप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी संसै भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाई रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्याण पलख हो है ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुटा पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझाए ताह मैं कह न कोई गावे को तारण होवे किसै तारण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण बढ़ियाइया चार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जी लै फरदेह गावे को जप दिस दूर गावे को वेख हादरा दूर कथना कथी न आवै तोट गथ गथ कथी गोटी गोट गोट देंदा दे लेंदे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाई राह नानक विगसै बेपरवाह साचा साहेब साच नाई भाख्या भाव अपार आखहे मंगहे देह दे दात करे दातार फिर के अगे रखी आए जैत दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जैत सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वह जानिए सब आपे सचियार खाता न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान
ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਾਰੇ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੌਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਬਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀਸਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਰਖਾਏ ਕਹੇ ਜਾ ਸੁਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼

सुनया है दुख पाप का नाश, सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमान, सुनया जोग।

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत भी दहतियार पाओ खला गंड बताऊ पांडा पाओ अमृत तत।

प्रसाद। अरूप है अनूप है जुहा पुह है अलेख है अपेख नाम है काम है अदेह पेह जीत पीत है त्रमान दान त्रिवर्ग सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है जाद है अजन्म है वर्ण भूत वर्ण है अगंज पांज चूज है चांज है अमीघन भीघ तंद बंद है

आदि रूपन आदि मूर्त जोन प्रख पार सर्व मंत्र मान देवा पेवा दुधार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर जन्म मरण मही न जकर बकर विराज दर्जा कर माने प्रतीन

सर्व बालक सर्व कालक सर्व गोपन काल उजत्र तत्र विराज ही अवधूतर उप्रसाल नाम ठाम ना जाजा करु ब्रंग न रेख आदि पुरुख उदार मूर्त जो नाद शेख

कथनीय नाद खलखंड ख्यालु गुरबर कालु कर कर प्रणाम जजरन नाम अंश जिगाता जजन बात आन चंज गात आन चंज बात आन चंज गात आन रंज बात अंटुट भंडार अंठट अपार अडीठ धर्म अतडीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तव प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रैत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वभाष्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है परते पर है करुणा कर है जप जप थप थप है अकृताकृता अमृत अमृत है अमृतामृत करुणाकृत है अकृताकृत तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत अमृत अमृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जस के जस है भुजंग पर्यात शंब नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग दत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नारंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांग भंगे भंगी स्वरूपे नंगीय नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगीय कामे एक अक्षरी शांग अपंग है नंग है भीख है लेख है परम अजय अलय अप है अभय अपू अजू नाश काश गंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख भीख अनाम काम काट अनाथि परमाथि अजोनि मोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अगर्मंग बर्मंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात शंद नवासतुल प्रणामे समासतुल प्रणासे अगंजल नामे समासतुल निवासे इंद्र कामंग विभूते समासतुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी ग्रीमल कनिंदा समासतुल निवासी अजायब विभूते अजायब गनी में हरियं करियं करियं ग्रीम में चतुर्जकर भरती चतुर्जकर भरती चतुर्जकर पाले चतुर्जकर काले चतुर्जकर पासे चतुर्जकर वासे चतुर्जकर माने चतुर्जकर दाने चाजरीशम चतुर्जकर भरती चतुर्जकर भुगते सुयं पौ शुभं सर्वदा सर्वजूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपांगं बैभूते चतुर्जकर भरती चतुर्जकर भुगते सुयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते।

कृपा दृष्टन जाय ने हरे हो दाके दाव धन कमो हरे हो हृदय सद कर्मो सब हो दुष्ट शास सक न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल फास्ते ताई उबारा।

आए विचार मारे तरह तारे उल्ट जोन न आवे आप पारस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अन दिन हरख साचा दुख कलबिग पर हरे सच गवाणा सच नाम पाया सुख गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण पाला है सच मन सतगुर पुनदान दया मते फिर संग भावे सहजन आवे बेणी ता संग मसद सदे आराध एक अंकार सचा नित देश जड़े सवाया गात संग मीता नान सत संगत कर जानन मेल मिलाया कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब को एक वड्या किया हाँ मूर्ख जन्म अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा कूच करह आव है बिखला दे शब्द सच है गुर मेरा आखण तो उठ न भगत भंडारी परपुर रहया सोई नानक साच कह बेनती मन मांझ है सच सोई आखण तोट न भगत भंडारी परपुर रहया तोई परपुर रहया सोई नानक साच कह बेनती मन मांझ है सुखोई वाहिगुरु जी का खालसा।

जगत स्वर दानुप अग्नि सरंग प्रसाद। आसम महला पहला वार श्लोक नर श्लोक की महले पहले के लिखे तुम्हें सारे की धोनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरा पे जो आशीर्वाद मां से देते किए कथन अभिवार माला दूजा करे।

प्रदीप जय पूज संभा प्रदीप जगह प्रसन्दास प्रदीप जय जाते आप नानका नक भी जाए जय मला दूजा भारत का।

0: दो प्रकार चिंता करे दिन उपाया जग दीवान अभग नानक सच्चे नाम बिन
1: प्रवान लखी सहजोगान लक्ष राम लक्ष्मान पढ़िया पाठ पुराण जिनका प्रकरण किया लिखा बलदान नाम स्मृति मिथ्या कर्मचारी शांत पौरी
2: सच पाया जिनके हित सच छाया सच में जाने को मुझे सच आया।

0: कर्म से सरदा मनो द्वार सबको पूरा तो होगा कर्म को जाता है पिछा पाइया काना सोले जा तो माला लाला ला।
1: सारा मारिया करता देश हो अगे जात में जो रहे अगे जू न

भगवान करने हर हर की जय अनुराधे नाम तो पिता रहत में रो क्या की जय हर तक सब की जान दा श्री रोग आदि जय जनार गुरु कर किरा नार गुरु की जस भय हर तक चली जस लोक माला पहला गोग्रंथ तो लावो रोग करना जाई तो

संत जना का लूंगरा ओढ़ नग्न न होई, भगत जना का लूंगरा ओढ़ नग्न न होई, सिर प

जेगा लगा पर सोती जाए सत्या किसे लगा दो अन्य का पानी जगह सुनने का लू पापा पापा गलिया छुपा।

आवाज खटने ना जब गए थाए दीवाने तो कर लेता हमको मैं डर लाए लेता की फुटा मानता जो दे अब ही कर

0: के सब नर कुंभ में पर है
1: जन या मैं भेज नरंज बचानो
0: मैं हूँ परम पुरुष को दासा देख आयो जग मैं
1: हम कहूँ और कुछ

0: Sokatta kadu soyun denya ristmaar, kai ka sumaar to chodutne paar, naar ke diwar yo nuji nahi jaar, sokarat sute jaar, sokarat sute jaar.
1: Pavitra Bihari, Jan Guru Gobind Singh Sahib, Sikhi De Data, Jeevan De Data, Sarbansh Dani, Daaj, Mahan, Agman, उत्सव दिहाड़ा गुरमुख साध सिंह माई भाई मना रहे हो सारे गुरसिख माई भाई आज बधाइयों के पात्र हैं जिन्हों से वाहगुरु की बख्शिश हुई है कृपा हुई है कुरबानी तिना गुरसिखा भाई भगत गुरपुरब करन दे साध सिंह की बहुत ये महान पदवी उच्ची है जिन्होंने भाई साहब भाई गुरदास जी बड़े प्यार नाल पे वचन करते हैं कि भाई भगत गुरपुरब करन दे प्रेम भक्ति नाल जो अमृत वेले तो बैठ के हुण तक सच्चे पातशाह दी प्यार भरी याद च बैठे प्यारे महान सतगुरु दी वरेगंढ मना रहे हैं गुरपुरब मना रहे हैं बागां वाले गुरु के प्यारे हैं उन्होंने गुरसिखां तो कुरबान कुरबान सदके सदके इन्होंने अमृत वेले उठन का समा प्राप्त होया जितने जुड़ के बैठ के महाराज जगदीप ने शरण करते हैं महाराज की याद हृदय आई सतगुरों के दर्शन करके अपने नेत्रा उठारिया और कन्ना अपने बाणी सुन के सचे पातशाह जी कन्ना उठारिया हिरदा पवित्र किया रचना पवित्र की बाणी सुन के पढ़ के विचार के सचे पातशाह जी रहमत हुई मैं समझदा इस तो उत्ते होर गुरपुरब की मनाया जा सकता है आप जनता के योग हो और बधाइया के योग हो सचा पातशाह कृपा करे उसने रहमत की मुबारक सानू समा प्राप्त किया है मेर उसकी बख्शिश का सदका जिन्हें भी उसका शुक्रगुजार हो चुकी है उन्नी असी थोड़े हैं उन्नी असी उसके ऋणी हाँ हमेशा उसकी याद इस तरह से अपना जीवन बतीत करिए सिखी का दाता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सारे प्यार नाला को धन गुरु गोबिंद सिंह अब सारे से कृपा की है इसे बिठाया है सिखी दान दिता है बचन करके जागत जोत जब निस बाकर एक बिना मन नैत न आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मरी मत भूल न माने तीर्थ दान दया तपस्ंजम एक बिना नह एक पहचाने पूर्ण जोत जगे घट में सब खालसा ताहिं खालस जाने सचे पातशाह जी कृपा होइए अज सारे ही सतगुरों का गुरपुरब महान धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी शहीदी स्थान से मना रहे हैं सचा पातशाह कृपा करे गरीब नवाज सतगुरु सारे गुरसिखां दे हिरदे च वस के अपने सिखी का जीवन दे के समा सबर करन दा समा बख्शन मैं आस करदा हां कि जिस तरह आपने कृपा की है अमृत वेले तो बैठ के हुण तक कागज साहब च महाराज जी दार करके इतने सुन के अपने समय नूं सबर कीता है सचा पातशाह बाकी का समा भी इत्थे ही बैठे आपने सतगुरु की हजूरी च बैठ के सतगुरु का गुरपुरब मनाओगे आप जनता के योग हो गए इस वेले सच्चे पातशाह दे प्यारे आप पासों मेरे को हुई फुल आपने क्षमा करनी है तो मैं हूं थोड़े को

का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन कृष्णा दूजे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुजे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन

सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे

संग होत सोहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याय। नानक गुरमुख परम गत पाय। बहु शास्त्र बहु सिमृति देख सर्व कडोल पूजना।

साथ संग किस क्यों नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप।

हे मन, किसी मनुख का आसरा औका ही व्यर्थ समझ, सिर्फ एक अकाल पुरख ही सब जनू देन योगा है।

ठाकर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की रखे निरंकार, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक

हे प्रभु, पटकता पटकता मैं तेरी शरण आ पिया हाँ। हे मालक मेरे, नानक की यही बेनती है कि मैनू अपनी भक्ति में जोड़।

नाभौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म बहया परणवत नानक तिन की शरणा।

परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों उस पार ब्रह्म परमेश्वर जी की दया सतगुरु जी दे बख्शे हुए उद्यम और प्रेरणा का सदका आप जी

ट्रिब्यूनल प्रेम पैदा करने वाली जिंदे नाल प्रेम नाल मन रंगिया जाए शेर दे संत विच भी ये गल सी हर अमृत भिन्ने लोए न मन प्रेम रतन ना राम राज प्रेम नाल नाल तुर रहे हुन अंदर प्रेम दा बाण मारना है गुरबानी रब्बी प्रेम दा प्रतीक है सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब टुकते हुए मना नू रब नाल जोड़न दी सांझ पैदा करन दी शक्ति रखता है विछड़े हुए मना दे हिरदे विच प्रेम जगांदा है गुरु ने रत्न रूपी तहश विच रब्बी प्रेम दी बाणी दा तीर रखिया ते तीर भी ओ जेड़ा अनिया वाला हो गया सानू ओ नसीब नहीं हो रहा अनियाला तीर उसनू आखदे ने जिस तीर दे पिछे अगे तकर्द हुंदी है उनके पिछे भी अनिया किनारे बने हुंदे ने ते उना किनारियां दा ये कम हुंदा जदों तीर प्रवेश कर जाए ते पिछले हिस्से नूं ओ अनिया किनारे रोक लैंदे ने उनका नतीजा निकलदा है कि तीर पार होके लंघ नहीं जांदा क्योंकि लंघ जाने तो बाद तां फिर समय नाल जख्म भी मिल जांदा है पीड़ा भी खत्म हो जांदी है पार हो गया ना लंघ गया जख्म रह गया कुछ दिन बीतेंगे समय नाल जख्म मिल जाएगा पीड़ा खत्म हो जाएगी पर जे तीर अंदरों निकले ही ना रुक जाए पिछलियां अनियां जड़ियां ने किनारे जड़े ने उस तीर नू रोक लैन तां ओ अंदर दी पीड़ा जिसनू प्रभु प्यार दी प्रभु दे विछोड़े दा एहसास रूप पीड़ा आखदे ने साडे की है कई बार गुरबाणी दे किसे शब्द दा तीर वजदा मन ते ਸਾਡੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਨਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ

marque Jive. आपका कई बार शब्द पढ़ने सतगुरु मेरा सर्व प्रतपाले सतगुरु मेरा मार जीवाले मारदा भी है जीवंदा भी कर जाए मैं हैरान होया श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सतगुरु ने आख्या मारन लई भी मारन लई भी शब्द है जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यो राग मारू राग जी जेड़ा मन काम को तो लोभ मोह अहंकार का स्वरूप बन चुका हो उस मन नू मारना पैना ते मारन लई भी यह मारू राग है का शब्द आराध्य है नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यो राग ये नहीं मेरा जीवन ही दिन है मारदा भी है मैं एक बार की थी ते माली सियाना माली सफल माली किसनू आखते ने ये नहीं असि समझने माली का काम बूटे लाने नहीं भले जीवन उन्ने बूटे लाऊंगा नहीं जिन्हें पटना है माली का काम बूटे पटना नहीं तो पटने पैदे एक बूटा लगाने लिए पता नहीं किनिया घा दिया तेरा किन्ने बेलोड़े बूटे पट के ते फिर उन्हें एक बूटा लाने की थां बनानी पैदी हम अंदर काम क्रोध लो मोहंकार बड़े बेलोड़े बूटे पैदा हो गए बड़ियां ले पखड़े दिया बूटियां पैदा हो गई गुरु ने नाम का बूटा लाने गुरु ने प्रेम का बूटा लाने पहला वो बूटिया मारना पैगा ना गुरु यो कर आखद भलेगा जीवन मुक्त ओनू आखीद पहला गुरु के सामने आके अपना पहला आपा मारते आपा मारते अपनी हों खत्म कर जो आपा मर जाएगा ना फिर गुरु एक जीवन देगा वो होएगा नवा जीवन वो जीवन जेड़ा है उनका सफर प्रभु तक पहुंचा सकेगा उनके विच कुछ परिवर्तन आएगा सदू कहने लगेगा।

क्यों? क्योंकि इस खंडम ब्रह्मंडन साजन वाला तू है। मैं पिछले श्लोक विच पिछले वार की पौड़ी विच पढ़ा है कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दूजी कुदरत साजी है। इस सारी कुदरत का कादर तू है। मैं किवें आखा तू कोई गलत सिरजना की थी। इसलिए जो मैं हूं इस निगाह नाल देखना ना, विश्व संसार तुम जो देख दे एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया हूं तो मैनू एहो ही खंड सच खंड दिसदे ही। हुण मैनू किसे आकाश दीयां उचाइयां ते किसे पताल दीयां गहराइयां ते किसे सचखंड नूं ढूंढण नहीं जाना पैंदा, बल्कि सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड तेरी सिरजना ब्रह्मंड तेरी बनाई हुई है लुकाई, तेरे बनाए हुए आकार सच ने। क्यों? क्योंकि सच होने करके बदलते नहीं। किसी के हुक्म में ना ही शरीर बदलते, शरीर की बनकर है। मेरे रब ने जोड़ी बनाई है वो ही पैदा होंगी। कुछ हिंदू के घर पैदा हो गए, मुसलमान के घर पैदा हो गए, ईसाई के घर पैदा हो गए, जोड़ी बनकर है मेरे रब की बदल नहीं सकता। कोई आखे मैं हैरान हाँ, अज भी देवियां पैदा होंदिया ने, बड़िया देवियां ने ना अपने अपने रखाए हुए ने, गुरु मां देवी है होर देवी है। अज किसी देवी की चार बाहां नहीं लगती। अज असी दो बाहां वाली देवियां देखने, पहला कभी चार चार अठ अठ बाहां वाली देवियां होंगी की कारण? किसी को कल्पना तो नहीं थी, सोचना पड़ेगा जी। ऐसा हो सकता कि अज दी देवी क्यों नहीं चार बाहां अठ बाहां लवा लेंदी है रब को? क्योंकि आकार जो ने बनाया वही रहना। कोई कल्पना जो मर्जी करके मूर्तियां फोटो बनाई जाए, अज दी देवी ने किसी अठ बाहां लवा। गुरु कहते जी

नजरिया बदलता है। हर चीज उस सच्चे नु पछाने जा रहे हूं। ऐसे दुनिया जिन्हों दुत्तर दुनिया आखदा, जिन्हों आतिश दुनिया आखदा, हूं गुरबानी राही भी यो गल आखदा है कि सब दुनिया सुभान जे सच को मर गया। गल तो सच भी है ना, जिसे घूम जाए सब दुनिया सुभान जे सच कमाई है, सिज्जे दर दीवान आप गवाई है। शर्त पूरी कर ले, जीवन मुक्त होने लिए आपा गवा दिता, आपा मर गया मुड़ के नवा जीवन मिले। हुण वो शर्त पूरी होने तो बाद दुनिया सुभान हो गई। हुण दुनिया को संसार को डर नहीं लगता, हुण कुदरत को भय नहीं होता, बल्कि कुदरत विचों कादर दिसदा है कि जेड़ी चीज भी देखदा है ना उन्हों देखदे ही मन विच सोचदा है आ भी मेरे पिता ने बनाई है। सिफतां दी करनी शुरू कर दिंदा, सलाह तां उन्हीं शुरू हो जाती है। इसलिए वो सलाह तां वो विचार भी सच बन जाती है। जिन्नी देर गुरमत दी गुरु दी रब दी विचार ना हो सच नहीं आखते, जिथे रब दी विचार ना हो सत्संगत नहीं आख देंगे। इसे भी तो गुरु ने आख दिता सत्संगत कैसी जानी है। जिथे को नाम बखाई क्योंकि विचार ही सत दी है। उन्होंने जो सत दे विचार से आते हैं उदो पता लगता है सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान तेरा हुक्म सच है। कभी चलता नहीं, कभी कोई बदल नहीं सकता, किसी के प्रभाव थले नहीं, किसी के डर थले नहीं। इसे बस नहीं, वो हुक्म जेड़ा केवल अंदर नहीं फरमान होता है वह भी सच है। कई ऐसे ने जिन्हों के हुक्म चलते ने पर चलाउंदे नहीं। तेरा हुक्म भी है चलदा ते फिर तू चलाउना भी है। ते कई बार ऐसा हुंदा जे जिन्ना दे हुक्म चलदे होन वो जदों चलाउंदे ने ना उदों गलत वर्तों करदे, सच दी वर्तों नहीं। अज भी असीं देखदे जिन्ना दे हुक्म चलदे ने वो अपनी मर्जी दे हुक्म चलाउण लग पैंदे ने, पर नहीं मेरे रब तेरा हुक्म भी सच है ते तेरा चलाउण दा तरीका फरमान करन दा तरीका भी सच है। सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। उस कर्म की होंद का पछाण का प्रतीक जेड़ा निशान है वह भी सच है, क्योंकि तेरा कर्म कोई झूठ नहीं। क्योंकि तो कर्म नहीं नाम बनना है, कर्म नहीं तेरे कर्म नहीं गुण बनना है। कहने लगे यो कारण है कि सच्चे तुद आखे लख करोड़ लखा करोड़ा तेन सच सच सच्चा सच्चा आके जप रहे ने। ते मैं समझना जिन्ना संसार अंदर जोर ते तान है हे सच्चे वह भी तेरा ही दिता हो। सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, जेडे तेरे गुण ने। सिफत तो भाव है गुण, इस किनिया सिफतां ने किन्ने गुण ने। तेरिया सिफतां तेरे गुण सच्चे ने, इसे लई उन्हां गुणां दा उचारण भी सच है। जेड़ा तेरे गुण गाउंदा है वह भी सच गा रहा, क्योंकि झूठ गुण नहीं, इसलिए सलाना भी झूठ। सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह हे सच्चे पातशाह अकाल पुरख तेरी सारी किरत सारी कुदरत हूं मैनू मेरे तेरे दरम्यान एक दीवार नहीं दिसदी, बल्कि मिलाप का दरवाजा दिसदी। जे मैं जंड नू पूजदा होवां, जे मैं पिप्पल नू दीवे जगांदा होवां, फिर तो वह मेरे ते तेरे दरम्यान विच दीवार बन खलोते ना। हुण मैं जो पिप्पल की हरियावल देखना ते उनदे विचों भी तैनू लभना, इनू हरियावल कौन दे रहा, तू दिस पैना। इसलिए हुण तेरे मेरे मिलाप का जरिया नहीं, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह हुण मैनू वो सच दिसदा। तू
ਹੈ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਹਨ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ

गुरु अर्जुन देव जी का कातिल दरअसल जहां जीव ही थी, पर जहां जीव तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू का भी हाथ थी। चंदू बादशाह जहांगीर का शाही दीवान सी। जद चंदू की धी मुटियार हुई तो उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर्कर लभन लई एक पांडे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्होंने बोलों साड़ी जथा है क्यों दसता है।

गुरु जी की तारीफ की गल सुन के चंदू दीवान खुश होने की बजाय गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला साजना सुने बहु रोल कुचोला दे मां वाक अनुसार चंदू दीवान चल लगा और किथे ने शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर किथे राजसी शक्तियां ते किथे सारा दा डेरा और तुसी तुबारे भी इत मोरी नहीं आए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा भावे तुसी मेरे मुताबिक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लियां। उहनां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदा नहीं सुन सकदा। गुरु की निंदा सुने ना कान कानों घूर के पिछा हटांदा ऐ जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा हंझू देख के कास तू हसदा ऐ जे तू रोंदिया नू नहीं वराउण जोगा कानों दुख दे दिलां नू दुखांदा ऐ जे तू जख्मां ते मलम नहीं लोण जोगा कानों बंदिया कूड़ विहालदा ऐ जे तू नेकियां नहीं तां मर जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के खे क्यों भेजी।

बादशाह जहांगीर तक पहला ही इस मौके की उड़ीक में सी कि कदम गुरु अर्जन देव जी महाराज नू शहीद करवाया जावे, क्योंकि ओ उस वक्त हो रही गुरु घर की महिमा नू वेख के जर नहीं सी सकदा। ओ आप अपनी कलम नाल सोच के जहांगीरी विच लिखदा है कि दरिया ब्यासा दे नेड़े गोइंदवाल विच अर्जन देव नाम दा एक फकीर रहिंदा सी। उस कोल बड़ी दूर दूर तो हिंदू अते भोले भाले मुसलमान आउंदे सन। उसने अपनी बुजुर्गी का बड़ा ढोल वजाया होया सी ते तिन्ना चौहा पीढ़ियां तो उसकी झूर की दुकान बड़ी गर्म सी। ओ गुरगद्दी नू दुकाने बातल यानी झूर की दुकान लिखता है, कहिंदा है कि मेरे दिल विच एह विचार सी कि जां तां इस झूर की दुकान नू बंद कर दिता जावे ते जां फिर इस्लाम धर्म विच ले आंदा जावे। ओ किसे ठीक मौके की उड़ीक विच सी कि उधरों खुसरो वाली घटना वापर गई। खुसरो जो कि बादशाह जहांगीर का पुत्र सी ते जहांगीर तो बागी हो चुकिया सी, अते दूसरा चंदू दीवान ते गुरु साहब के वड्डे भरा पृथ्वी चंद ने बागी उत्ते होर तेज पा दिता। बादशाह जहांगीर ने मुर्तजा खान ने हुक्म दिता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाए।

अरे वृद्ध, जरा जिन्ना भी हाथ लौंदा की सिता निकलता है। तुसा खुसरो नु राज तिलक दिता है, बादशाही दी असीस दिती है, 5000 नगद दिता है, अते उसनु लंगर छकाया है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, बादशाह जहांगीर, गुरु का लंगर सब ले संजा है। इथे भावे कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, जैनी आवे, बुद्धि आवे, जोगी आवे, सन्यासी आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, काफर आवे, पंडित आवे, चमार आवे, राजा आवे, कंगाल आवे, सिख आवे, सिख दा वैरी आवे, सब नु लंगर मिलदा है ते मिलदा रहेगा। तेरा पिता जलालुद्दीन अकबर भी तां इसे ही लंगर विच बैठ के प्रसादा छक गया सी, जे अज तेरे पुत्र ने छक लिया तां केड़ा हमेर आ गया। बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहिब, तुसी अपने किते जुल्मा ते इकबाल करदे हो, इस करके तुहानू 2,00,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए माया सारी गरीबां दी है ते जुर्माना एक कुल भी नहीं दिता जा सकता। तब बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहिब, मेनू पता लग्या है कि तुसकी तुसा एक ग्रंथ लिखा है, तुहाडे बचन दा इको एक तरीका है कि तुसी उस विच हजरत मुहम्मद साहिब ते इस्लाम दी तारीफ दे कुछ लफ्ज पा दियो, तां तुहाडा गुनाह माफ करता जाएगा, जे नहीं तां मरन वास्ते तैयार हो जाओ। तां हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए ग्रंथ इलाही हुकम विच लिखा गया सी, ते संपूर्ण हो चुका है, हुण इस विचों ना कोई अक्षर कढ़िया जा सकता है ते ना ही पाया जा सकता है। हाँ, जितों तक मौत दा सवाल है सानू परवान है। जदों गुरु साहिब ने माफ परवान कर ली, तां बादशाह जहांगीर ने यासा वा यासा दी सजा दा हुक्म दे दिता, जिस तो भाव है कि शरीर नू इन्ना कष्ट दिता जावे कि शरीर खत्म हो जावे, पर शरीर विचों एक तुग्गा भी खून दा बाहर ना निकले। बादशाह जहांगीर ने ए ड्यूटी चंदू दीवान नू दे दिती। चंदू दीवान दी ड्यूटी लगाई जाण विच वी बादशाह जहांगीर दी एक चाल सी। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਉਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ गुरु साहब नु उससे बिठा के सीस उत्ते तत्ता तत्ता रेता पाया गया। जिस तरह चंदू दीवान गुरु साहब नु बदल बदल के तसले दे रहा है, उस दर्दनाक दृश्य नु आपकी सेवा विच इस तरह बयान किया जा रहा है।

शक्ति पर ठंडे कौन, शांति दे कुंज, निम्रता दे सागर, गंभीरता दे सोने, गुरबाणी दे बहुत, गुरमत दे स्कॉलर, पंजवे गुरु नानक, शहीदा दे सिरताज, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। जिसे कवि ने सूची किया है, इन्हों अखा ने कई पतंगिया लाता से सरदिया देखा है, मैं कई वेर कुछ इसे गुंजिया देगा विकली कर दिया देखा है, तत्ती रेत से कई नमाजिया मैं कलमा यार दा पढ़दिया देखा है, पर मैं फिर दसा अर्जुन देव ताई किदा अग से सरदिया देखा है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहन वाला जो उस वक्त लाहौर विच रह रहा सी, जदों उसने किसी ने जाके दसिया और पकड़ा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साई मियां मीर दौड़िया आया। आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती सही ते बैठे हुए हैं, सारा शरीर छले छले हो जाता है, पर मस्तक दर का मारिया है ते मुखो की कह रहे हैं, तेरा सिया मीठा लागे। एक सब कुछ देखी साई मियां मीर ने गुरु साहब ने सवाल किया, मियां मीर ने पूछा सतगुरु ने तरी सपनी वांग संदूर दाता तन भर दिता सारा छालिया ने जिवें वेल के गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूड़ा रेशमा तो जिसम धरके होया मनूर दाता, और कल सख्त चेचे तरी से एक ही खेल चाहे रबी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती की महाराज मेरे कोलो इक सिंह जरे नहीं जाते, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर से दिल्ली भी इस नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछा साईं जी ये शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां, तां जवाब मिलिया जी हजूर को, तां गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया इन्हां शक्तियां नूं असीं भी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है, साढ़े दो निशाने सन, असीं इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगो हस के सतगुरु कहन लगे तू पकड़ा रमक पछाणी नहीं, मैं तेरे तेरे दिल दी जान ली, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखना है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, और तू रखती ए मैं रखूं ए चाहे मेरे अंदर दी।

अंतिम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन्हें इसलिए दिते गए पर फिर भी गुरु महाराज के चेहरे से शांति ते मन विच टिकाऊ सी। इस सब को देख के चंदू दीवान हैरान रह गया। उसने जाके जदों बादशाह जहांगीर नूं दस्या तां जहांगीर ने सोचा कि उस केड़ा तस्ती अपनाया जावे जिस नाल कि गुरु साहिब नूं इस तों वी ज्यादा सत पहुंचे। तां उसके दिमाग विच

देवी महाराज का शरीर तो पहला ही छाले छाले होया पिया है, क्यों ना इस उसे ठंडा ठंडा पानी पाया जाए। जदों छाले सटेंगे तो जो गुरु महाराज को तकलीफ होगी वह मैं अपनी अखों नाल देखूंगा। इस क्रूर विचार सोच के बादशाह जहांगीर ने अपने कुछ मुगल सिपाही भेज के गुरु अर्जन देव जी महाराज को रावी की चेता कर दिता। 3 मई 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ज्योति ज्योत आ गए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी राम। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी लासानी शहादत देके एक गुरमत गाड़ी राम नालता जिस उत्ते अज तक सिंह चलते आ रहे हैं। सिंघा ते चीकी नहीं दिती, सिंघा पति तन के बिठा दिता गया। आरे नार जो फर करता उबर दिया गेगा जो उबार दिते गए, रोई विच लपेट के सार दिते, जंडा नाल पुट्टे लटका दिते, पटिया ने चो दिते गए, फांसी के तख्ते ते चुल गए। ऐसे ही बस नहीं, सिंघा ने रेलां दिया पटड़ियां के लम्मे तह तह के अपनियां जाना कुर्बान कर दितियां, पर सानू की बख्श गए ऐसे सरदारियां।

0: ग्रह शोभा जा कर नाहे आवत पहिया खुद जाहे वहां का अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागै दोख वहां का अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागै दोख वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: वाहे गुरु जी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किस दी